कहीं बनिया बैठकर तिजोरी भर रहा है, वो अपने आनंद में बैठा है, मौज कर रहा है। कहीं अफीम की अफीम खा के अपने आनंद में बैठा है। बाबा जी कहते हैं सबको अपना अपना रंग प्यारा लगता है। हजूर कहते हैं

भूखे शेर को मांस मिल जाए, झपट पड़ता है। इसी तरह गुरु प्यारों को सत्संगत का आनंद मिले तो भागे हुए आते हैं। भूख है ना अंदर, शेर को मांस की भूख है, बहादुर को लड़ने की भूख है। बाबा जी कहते हैं कंजूस को पैसे की भूख है, वो जमा करता ही जाता है, चाहे बेटा ना हो औलाद ना ही हो, फिर भी उसे कंजूसी की आदत पड़ी। बाबा जी कहते हैं ऐसा ही भगवान के भक्तों को इस संगत का प्यार रंग है, जहां जहां पर प्रभु ने लगा दिया वो वही

मेरे मालिक मैं तेरे नाल जुड़ जा, तेरी गलवकड़ी विच आ जा, तेरे विच समा जावा, मन करके तन करके, अधूरा नहीं, केवल तन करके जुड़िया होवा, मन ना जुड़िया होवे ऐसा भी नहीं। ते जे मैं ऐसे बहाने करा कि मेरा ता मन जुड़िया है, तन की केड़ी लोड़ है, प्यार ता इस तरह कोई नहीं होता। जिन्हां ने प्यार कीता है महाराज उन्हां दी गल करदे ने, गुरसिखां दी गल करदे ने, भगतां दी गल करदे ने, संतां दी गल करदे ने जिन्हां ने प्यार कीता, ते प्यार कीता ते फिर भरपूर कीता। प्यार च अधूरेपन दी की गल, ते जद भरपूर प्यार करना है ते फिर तनो मनो प्यार करना।

भगत नू गुरु प्यार वाले नू बिना गुरु के दर्शन ते गुरु के दर्शन दे भी दो अर्थ ने ना एक ता दीदार जिहड़ी अखां नाल करने आपां एक दर्शन संस्कृत फलसफे नू कहिंदे ने जो गुरु की फलासफी है जे उहनू नहीं समझिया ते दर्शन सदा अधूरे रह जाणगे सतगुरु नू सब को देखदा चेता जगत संसार डिठे मुक्त ना होवे चिचर गुर शब्द ना करे प्या गुर शब्द ना करे विचार जिन्ना चिर गुरु के शब्द दी विचार गुरु के वचना दा अध्ययन गुरु के वचना दी कमाई ना कीती उन्ना चिर केवल आए मथा टेक के तुर गए ता प्यार बढ़ा दूंगा इस तरह वेखिया गल नहीं बननी अखां नाल गुरु के सोने दर्शन दीदारे ते मन नाल गुरु के दर्शन भाव गुरु के फलासफी दी विचार गुरमत दी विचार चले मन तन करके इत्थे महाराज कहंदे ने नहीं रह सकदा गुरु का सिख गुरु के दोहां दर्शना बिना फलासफी बिना ते देखे बिना गुरु नूं कोई नहीं इहदा गुजारा हुंदा दासां ने पावे बिन तरसावे एक खिण धीरज क्यों करे नाम बिहूणा तन मन हीना जल बिन मछली ज्यों मरे बंदा तड़फदा फिरदा रह जांदा गुरु तो टुटिया ईश्वर तो टुटिया होया नाम तो टुटिया होया बंदा मन करके तन करके बेचैनी विच रहिंदा जिवें मच्छी पानी चो बाहर कढ के सुट दईए उहनू कहीए तां केवल शरीर करके तड़फ रही है मन तां इहदा सुखी है कोई नहीं मन सुखी रहिंदा उह जिहड़ी शरीर करके तड़फ रही है अंदरों भी दुखी ते जिहड़ा बंदा अंदरों दुखी है उह शरीर करके भी तकरीबन दुखी हुंदा है तुसां देखिया बंदे नूं गुस्सा आ जावे कहिंदा मेरा तां तन मन पिया सड़दा कहिंदा और उंज भी चेहरा भी लाल सूहा हो जाएगा हथ पैर कंबन लग पैणगे हुण गुस्सा तां मन नूं आया तेरे शरीर नूं की हो गया और एक दिन ऐसा भी आवेगा डॉक्टर कहणगे गुस्सा ना करिया कर तेरा खाना तेनू कोई नहीं भ्यासम हुंदा तेरा मैदा काम नहीं करदा क्यों मैदा तां शरीर है मैदा तां शरीर दा केंद्र है गुस्से दा दिमाग च गुस्से दा मैदे नाल की तलक है बहुत वड्डा तलक क्रोध करने वाला चिंता करने वाला अज नहीं ते कल नूं बहुत वड्डा बीमार हो जाएगा शरीर ते मन दा बड़ा संबंध है प्यार मन ते तन दोहां तरीकियां दे नाल पुगदा एक तरीके नाल कोई नहीं पुगदा महाराज कहंदे ने जिहड़े टुट गए ने प्यार तो उन्हां दा मन ते तन दोवें कमजोर बेचैन दुखी रहिंदे ने नाम बिहूना तन मन हीना जल बिन मछली ज्यों मरे ते कहंदे ने मैनू एहो जी मौत एहो जिहा तड़फना एहो जी

गुरु नानक देव जी महाराज बयान करते ने, ऐ परमेश्वर मैं तेरा बाणिया हां, तू मेरा साहिब है। साध संगत आज दे इंसान कोल चार पैसे आ जा, कोई थोड़ी बहुत ताकत होवे वो समझता है कि मेरे वर्गा हूं कोई नहीं, ए जड़ी मैं है एहो इंसान नु चैन नाल नहीं बैठन देंगे। आज हर इंसान दुखी है, चाहे वो गरीब है अमीर है, कोई राजनीतिक है, और ये भी देखे है कई धर्मी भी दुखी नहीं, क्योंकि नाम रखवान दे नाल कोई धर्मी नहीं हो जाता। जदों तक मन विचों हौमे नहीं जाती उदों तक इंसान सुखी नहीं हो सकता। हौमे की है, मैं जो कहना ठीक है, जो मैं कह रहा वो ठीक है, जो मैं कर रहा वो ठीक है, बस ये मैं इंसान नु जीवन नहीं दिंदी। घरां विच भी सुख नहीं, घरां विच भी मैं है, भरा भरा दा प्यार नहीं, प्यो पुत्र दा प्यार नहीं, पत्नी पत्नी दा, पत्नी और पति दा रिश्ता बड़ा गूढ़ा संबंध है, पर कई बार इन्हां विच भी प्यार नहीं रहिंदा, क्योंकि जिथे होमे और माया आ जावे उथों प्यार उठ जांदा है, और होमे तां आंदी है जदों इंसान परमेश्वर नूं भुला दे। गुरु नानक साहब गुरु होके गुरु होण दा मन विच माण नहीं, कहिंदे ने ऐ परमेश्वर मैं तेरा नौकर हां, तू मैनू नाम दी रास दिती है। जिस तरह कोई सेठ अपने नौकर नूं दुकान ते बिठावे ते आखे लै तू हुण सौदा वेच, ते साहिब जी कहिंदे ने अकाल पुरख मैं भी तेरा नौकर हां, तू मैनू नाम दिता है कि ऐ नानक तू मेरा नाम दुनिया विच वंड, भाव मेरा नाम लोगों नूं जपा और मेरे नाल जोड़। ते साहिब जी कह रहे ने अकाल पुरख मैं तेरा नौकर हां, मैं तेरा गुलाम हां, मैं तेरे नाम दा ढंडोरा दुनिया नूं दे रहा ताकि लोग सुखी हो सकन, पापां तों झूठ तों ओ बच सकन।

और जिन्ना ने इस प्यार नो जान लिया उन्हां दा जीवन दुनिया दे राग रंगा तो उत्ते हो जाता है। क्योंकि साहिब जी बयान करते हैं जिन्हां ने नाम दा रस पीता उन्हां नू दुनिया दे झूठे रसां दा फिर मुहताज नहीं होना पैंदा। आओ विचार करिए जो इस शब्द की भावना है जो इस शब्द विच प्यार है उस प्यार वल आपा अपना मन जोड़ी रखना है और विचार करिए कि जिन्ना ने प्यार किया उन्हां दे मन दी तड़प किस तरह दूर होती है और किस तरह उन्हां नूं

मेहता कालू जी उठ के खड़े हो गए, बेबे नानकी और नाल उन्हां दे पति जयराम जी वो भी आ रहे ने। बेबे नानकी वेड़े विच दाखल होए और पज के अपने पिता मेहता कालू दे गल लगे। अखां विच अथरू पै वगदे ने ते कहन लगे, पिता जी मेरा वीर नहीं आया। मेहता कालू जी कहन लगे, धीए असां तां इह सोचिया कि जे तू आई है ते नानक भी जरूर आवेगा। इतने नूं भाई अजय राम जी भी अंदर आए। मेहता कालू जी कहन लगे, धीए जा अपनी मां नूं मिल, उन्नू भी दिलासा दे जिहदियां अखां विचों ते हुण अथरू भी

तानो गले लाके मिले तेनू गल ना लगाया ता माता तृप्ता जी एकदम रोना निकल गया ते नाले कहन लगे दिए हुण ते बड़ा चिर हो गया नानक नू देखी तू आई है कुछ भरोसा होया मन नू कि तेरा वीर मेरा सपुत्र गुरु नानक भी आवेगा। दूसरे पास भाई अजय राव अपने सहुरा साहब मेहता कालू जी के पैरों से मत्था टेके मेहता जी ने प्यार दिता ते भाई अजय राम जी भी पुछते ने पिता जी गुरु नानक साहब हाली नहीं आए असी ते इस आस्ते आए हां कि इस वरी जरूर महाराज जी दर्शन होंगे। भाई अजय राम रिश्ते दे विच गुरु नानक साहब दे भाईया लगते ने जिन्हां नूं आपां जीजा भी कहने पर ओ रिश्तेदारी घट और गुरु नानक साहब दे सेवक ज्यादा है। मेहता कालू जी कहन लगे जय राम तुसी आए हो मैनू भी भरोसा हो रहा है कि मेरा नानक जरूर आवेगा। कुछ समा बीते भाई मनसुख भाई भगीरथ गुरु नानक नाल प्यार करन वाले ए भी आए ता बेबे नानकी जी दे दर्शन कीते। इन्हां ने हाथ जोड़ के आखिया बेबे जी गुरु नानक साहब आए ने ता बेबे नानकी जी कहन लगे हाली आए थे नहीं पर जद बसंत रुत ने आना होवे ठंडी हवा पहला चलन लग पैंदी बहार ने आना होवे कुंजा दिया डारा पहला उड़न लग पैंदियां ने। जे गुरु नानक दे प्यारे आए ने ते गुरु नानक भी अज जरूर आवेगा। भाई अजय राम गुरु नानक साहब दी याद विच जंगल वाल तुर पए एक दरख्त दे थले बैठे बड़े वैराग दे विच गुरु नानक साहब दा उचारिया होया ए शब्द गाण लग पए अमली अमल ना अंबड़ै मच्छी नीर ना होए जो रते सह अपने तिन पावे सब होए। ऐ पातशाह जिस तरह अमली अमल नाल प्यार करदा अमल तो बगैर जी नहीं सकदा मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकदी असी भी तेरे नाल इस तरह ही

अपने सपुत्र धन गुरु नानक साहब की याद विच मंजी ते लंबे पए। एक पासे मेहता कालू जी भरा पए देखते और एक पासे भाई अजय राम और एक पासे राय पोए की तलवंडी का राजा राय बुला और प्यारे उड़ीकते पए ने कि इस वरी जरूर गुरु नानक साहब की वरे गंढ गुरु नानक साहब की हजूरी विच मनावांगे। सूरज डुबण वाला हो गया मेहता कालू जी दरवाजे वाल निगाह टिका के बैठे आ और बेबे नानकी जी छत ते खड़े होके राह पै थकदे ने। अचानक मेहता कालू जी खुशी नाल झूम उठे और आवाज मारदे ने तृप्ता आओ देख मेरा नानक आ गया है। कहंदे होया बुढ़ा बाबा कालू उठ के खड़े हो और सचमुच सामने धन गुरु नानक साहब नाल सेवक मरदाना वेड़े विच दाखिल होए और आंदे आ धन गुरु नानक साहब ने इस सद लाई सत करतार इस सत करतार अंदर जिवें लह गया दिल की गहराई विच। मेहता कालू जी खुशी नाल झूमदे होए अगे वधे धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे कोल आए। गुरु होण दा मन विच गुमान ने अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकिया जिस गुरु नानक नूं दुनिया नमस्कारां करदी है ओ धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकदे ने ते पिता ने बाहां तों फड़ के अपने सपुत्र गुरु नानक साहब नूं गल दे नाल लाए कंढ ते हाथ फेरे है अथरू नहीं रुकदे ते कहंदे ने बेटा अज मन नूं ठंड पै गई बड़ा समा हो गया तैनू उड़ीकदे हैं तैनू बड़ा मैं झिड़किया तैनू मैं एक वारी चपेड़ा भी मारी है पर बेटा बाद विच जाने है कि तू की है। अचानक ख्याल आया कहन लगे जा बेटा पहला अपनी मां नूं मिल धन गुरु नानक साहब। माता तृप्ता जी दे कोल आए मंजी ते कोल बैठे ते की देखते ने माता जी दी अखां बंद ने हाथां विच चोला है आपे कदे कहंदे ने बेटा नानक ऐ चोला पा लै आपे फिर कह उठदे ने लिया मां मैनू चोला पवा। ए वैराग देखिया ते धन गुरु नानक साहब अपनी माता दे हाथ फड़ के कहन लगे मां अखां खोल सचमुच मैं आ गया लिया मां मैनू चोला पवा। अखां खोलियां सपुत्र भी होवे फिर धन गुरु नानक साहब वर्ग घुट के छाती ना लाया अथरू किधे रुकन कहन लगे बेटा हर साल तेरे जन्म दिन ते चोला सी के रखदी है। साहब जी कहन लगे मां लिया फिर मैनू चोला पवा। पलो पली विच एक खबर सारे शहर विच फैल गई संगतां शहर दे वासी और वो प्यारे जिहड़े कीर्तन विच जुड़े सन दर्शन करन वास्ते उमड़ पए ते बेबे नानकी जी हाल भी छत ते खड़े सन कि पहला माता पिता मिल लें मैं फिर मिलांगी।

माता तृप्ता जी, गुरु नानक साहब नु कहन लगे बेटा नानक जाओ हुण अपनी वड्डी भैण नु मिलो, बड़ी वैराग विच है तन गुरु नानक साहब माता नु मिल के बेबे नानकी जी नु मिलन वास्ते उठे ता बेबे नानकी छत तू थले उतरे भज के आए चरणा ते मथा टेकन वास्ते, पर गुरु नानक साहब ने बाहां फड़ लईआं कहन लगे ना भैण तुसी वड्डे हो, भैणा भरावां दे पैरां ते मथा टेकन ए नहीं हो सकदा। सात संगत ए इतिहास ए कथा कहानियां सुनाण दा एक मकसद है। ए कथा कहानियां बाणी तां सुनाई जांदी है ता कि साडे मना विच साडे हिरदे विच प्यार होवे। जे साडे हिरदे विच प्यार होवेगा साडे घर विच भी प्यार होवेगा। जिहदे हिरदे विच प्यार नहीं, जिहदे दिल विच प्यार नहीं, वो किसे नूं की प्यार देवेगा। चंगा इंसान बनन वास्ते चंगा पिता बनना जरूरी है, चंगा पति बनना जरूरी है, चंगा पुत्र बनना जरूरी है, चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी बनना जरूरी है। जेड़ा चंगा पति ना बन सके, चंगा पिता ना बन सके, जेड़ा चंगा पुत्र ना बन सके, जेड़ा चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी ना बन सके, सात संगत ओ चंगा इंसान कदी नहीं हो सकता। ओ ना सिख हो सकता है, ओ ना मुसलमान, ना हिंदू, ना ईसाई, वो किसे गिनती विच नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने

दुनिया विच जा रहे हैं, बंदगी कर, सिमरन कर और दुनिया नू स्वर्ग बना, सचखंड बना। ये कथा कहानियां सुननिया अपने महापुरुषां दे जीवन वाल देखना है। ओ पति भी ने, पुत्र भी ने, ओ भरा भी ने, ओ सज्जन मित्र भी ने, ओ गुरु भी ने, ओ पीर भी ने, ओना ने दुनिया नू प्यार वंडिया। ते आओ ये कथा कहानियां सुन के अस भी अपने मना विच प्यार रखिए, साडे मन विच प्यार होवेगा, अपने घरदियां नू प्यार देंगे, लोकां नू प्यार देंगे, ते फिर स्वर्ग लभण दी लोड़ नहीं, ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी।

जद इतने बचन कहे भैन जी है बेबे नानकी तुसी वड़े हो तुसी मेरे पैरा ते मत्था टेको ते नहीं हो सकता साथ संगत एक एक लफज विचों साडे जीवन वास्ते सिख्या है ते वखरी गल है इना गल्ला नू कोई मन्ने पावे ना मन्ने पर सुख ता मनण विच ही है हुण तां गुरु नानक साहब ने भाई मरदाने नू किया मरदाने आ हुण तुसी जाके भाई अजय राम जी नू लैके आओ शहर वासियां नू पता लग गया सी दीपमाला उस वेले शुरू हो गई कि धन गुरु नानक साहब का अज जन्मदिन मनाण का सुभाग प्राप्त हो रहा है पर कुछ देर बाद धन गुरु नानक साहब आप उठे ता पिता मेहता कालू जी पुछदे ने बेटा किथे चले साहब जी कहन लगे मरदाना भाई अजय राम नू वैराग विच उठा नहीं सके धन गुरु नानक साहब आप उस जगह पहुंचे जिथे भाई अजय राम जी वैराग विच बैठे शब्द गा रहे सन अगे भाई मरदाना कोल बैठे शब्द पढ़ रहे और वार वार कह रहे सन जय राम जी उठो धन गुरु नानक साहब आ गए ने पर भाई अजय राम जी वैराग विचों उठ ना सके क्योंकि ए प्यार भागा नाल मिलता है और इस प्यार नूं ही जानता है जिसने प्यार किया है। भगत कबीर जी कहंदे ने सो कत जाने पीर पर आई जाके अंदर दर्द ना पाई। भगत रविदास और भगत कबीर साहब दोनों दे शब्द पढ़िए एको ही गल नजर आती। भगत रविदास वो भी मन की तड़प दसते ने और भगत कबीर साहब कहंदे ने लागी होए सो जाने वीर राम भगत अणियाले के ए प्रेमा भगती दे तीर जेड़े ने जिन्हों लग जा जिन्हों तीर लगते ने ओही जाने

श्री मुखवाक पातशाही दसवीं छपे छंद तव प्रसाद। चक्र चेहन अर बरन जात अर पात नहन जे, रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत कहे। अचल मूरत अनपौ प्रकाश अमितोज कह जय, कोट इंद्र इंद्राण साहो सहान गण जय। त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत, तव सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम बरनत। सुमत पुजंग पर्यात छंद नम।

नानक प्रगटया, सतगुरु नानक प्रगटया, मिट्टी धुंध जग चानन होआ। उस वेले पापां दी धुंध मिट गई, संसार ते पापां दी धुंध छाई हुई सी। कोई कर्म कांडा विच पिया, कोई जोगियां दे पिछे पिया, कोई सिद्धां दे मगर लगिया है, परमेश्वर दा नाम सारिया नू विसर गया सी। पाप विच रुझिया होया संसार, ते जदो अपने बढ़ाए हुए संसार दी ए हालत वेखी निरंकार ने, के मेरी बनाई हुई सृष्टि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्खा द्वेष दी अग विच जल रही है, ता निरंकार ने गुरु नानक दा रूप बनाया। गुरु नानक दा रूप तार के संसार ते जगत जिया नू तारन वास्ते आ गया।

बालक आप नारायण कलातार जग में परवरे हो, आप नारायण दा रूप गुरु नानक सच्चा।

राय जी ने पछाण लिया ए ता मेहता कालू पटवारी दा पुत्र है। आख्या नानक तूवे क्यों कीता? आख्या मैं ता उस प्रभु दे रंग विच बैठा सा, मेनू नहीं पता। मैं ता कालू नू सदिया। मेहता जी जदों आए, राय ने आख्या वेख वही तेरे पुत्र नानक ने गाइयां मजियां।

तेरा आख्या ते फिर जेड़ा आउंदा गया उदी चोली भरी गई ते कहंदे गए तेरा तेरा तेरा सात संगत बोलो श्री तेरा ही तेरा करके चोलियां भर रहे बाला लिया लिया के

तेरा मोदी खाना गुरु नानक लुटा रहा है, जाके उदे कोलो हिसाब किताब ले, नहीं तो लखा दा घाटा तेनू हो जावेगा। कोई लोड़वंद गरीब गुरबा गुरु नानक कोल आ जांदा है, चोली विछांदा है, गुरु नानक तेरा ही करके विच पा देंदा है, ते कोई पैसे नहीं लेंदा किसे कोल। जाके गुरु नानक कोलो हिसाब ले, दौलत खान जदों आया कहन लगा गुरु नानक मैं तेरे नाल हिसाब करने, कितने दिन हो गए तेनू काम कर दिया, पहले हिसाब ला लईए के की नफा होया की नुकसान होया, ते अगे फिर काम चलावांगे। साहब जी कहन लगे बेशक हिसाब कर लो भाई, कर लो हिसाब। ते जदों सारा हिसाब होया, इतिहास विच लिखे है के दौलत खान जदों सारा माल अंदरों गिणिया तोलिया ते की हिसाब विच लिख लिया, हिसाब कीता ते 735 रुपये गुरु नानक दे वद निकल गए। दौलत खान बड़ा हैरान होया, कहन लगा मैं सुनिया के तू सारिया नू रब दे नां ते दे जांदा है, ते फिर तेरे कोल ए पैसा नफे विच कित्थों निकल आया। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहन लगे दौलत खान जो रब दे रस्ते ते खर्च

आवाज आई आ नानक मैं तेनु संसार ते हटियां करन वास्ते ता नहीं भेजिया, मैं ता तेनु संसार विच भेजिया जगत जलंदा जल रहे है उना नु जाके ठारना है तू। ता गुरु नानक सच्चे पातशाह ने हाथ जोड़ के बेनती की, हे निरंकार मेनु उपदेश दियो मैं संसार नु की जपावा, मैं संसार नु की जपावा। ता आवाज आई उस जोत विचों, नानक तू संसार नु जपाउना है।

निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद, अजूनी सैभंगुर प्रसाद तक जदों गुर प्रसाद तक जदों आवाज आई ता गुरु नानक सच्चे पातशाह दी

बेबे नानकी प्रतीत वाली सी परोसे वाली सी कहन लगी किवे ना आखो मेरा नानक संसार विच डुबन वास्ते नहीं आया ओ तां कईयां नूं तारन वास्ते आया है। नानक कदे डूब नहीं सकदा ओदा जरूर कोई कोतक होवेगा कम होवेगा किसे कम नूं गया होवेगा ओ जरूर आवेगा और समा पा के जदों

उतारते हुए हरिद्वार जा पहुंचे। हरिद्वार दी जदों पवित्र धरती ते पहुंचे ते की वेख्या उत्थे दे लोग कर्म कांड

साहब जी कहन लगे जे तेरा पानी सूरज तक पहुंच सकदा तां क्या साडा पानी करतारपुर खेती तक नहीं पहुंच सकदा। पंडित जी कर्म कांडा विच कुछ नहीं जे पिया, जे परमेश्वर दा नाम नहीं जपोगे और कर्म कांडा विच पाओगे तां इना कर्मा कांडा ने तुहाडा उधार नहीं करना, उधार तां प्रभु दे नाम ने करना है। साथ सगत बोलो श्री बाबा नन सिंह जी महाराज कलेरां वाले पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी आप क्या करदे सन भाई, आ दुनिया दे जितने कर्म कांड जप तप हन ना, ए सारियां सिफरां हन, सिफरां ए सारे जीरो हन, और बेशक एक कागज उत्ते जितने मर्जी जीरो पा दे उना दी कोई भी मुल नहीं है जब तक उना दे अगे एका ना पवे। जे एक पावेगा, एका लिखेगा और उस तो बाद जीरो पावेगा ते दस बन जाएगा, दो जीरो पावेगा सौ, तीन पावेगा हजार। इसे तरह दुनिया दे जितने कर...

कर्म सारे नाश हो जाएंगे। जे परमेश्वर दा नाम होया तेरे कोल ता उना कर्म कांडा दा वही मुल पैणे। सात सगत बोलो श्री जिवें एके तो बिना उना सिफरा दी कोई मुल नहीं, इसे तरह एक प्रभु दे नाम तो बिना जो कुछ मर्जी करदा रह कदे थाए नहीं पवेगा तेरा। गुरु अर्जन देव पातशाह बाणी विच कहंदे हन, प्यारे इन बिद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका।

उस बच्ची ने सुनिया के इस जीवन दा कोई भरोसा नहीं है ता अगा होके जिथे गुरु नानक सच्चे पातशाह बैठे सन उस बच्ची ने जाके जदो गुरु नानक सच्चे पातशाह दे चरना ते सिर रखिया गुरु नानक दे चरना दी शो पा के उस बच्ची दे कपाट खुल गए ज्ञान हो गया कि मैं किस वास्ते संसार ते आई हूं और मेरा मनोरथ की है। ऐसा सच दा उपदेश गुरु नानक ने दिता उत्थे संगतां नूं के भाई एक परमेश्वर दे नाल जुड़ो एक प्रभु दा सिमरन करो उस सिमरन ने ही तुहानूं इस संसार सागर तो पार करना है।

पातशाह तो सवाल कीते, पातशाह तुसीं अपनी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज क्यों नहीं कीती? कहन लगे फर्क है, उत्थे रब दी कथा है, इत्थे मैं अपनी कथा कह बैठा, इसलिए अपनी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज नहीं कीती। पातशाह तुहानूं की लोड़ पै गई अपनी कथा सुनाण दी? कहन लगे लोड़ सी, जिस वेले तुलसीदास किसे प्यार विच आया, श्री राम नूं भगवान राम कह बैठा, सूरदास बहुत ही सत्कार विच आ गया, कृष्ण नूं भगवान बना गए। कोई ऐसा सिख उठ के मैनू भगवान ना कह बैठे, वाहगुरु ना कह बैठे, इसलिए मैनू अपनी कथा कहनी पै रही। पर जे पातशाह तुहाडे गुणां नूं ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਭਈ ਤੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ, ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ

बादशाह कहन वाले कह छड़ देनी। भाई गुरु गोबिंद सिंह जी ने अवतारा उन्दे बड़ा खंडन कर दिते, उन्होंने दिल विच कोई भेद सी, फर्क सी। बादशाह कहन लगे, नहीं मेरा किसे नाल वैर नहीं, मैनू जिवें वाहगुरु ने गल्लां आखियां ओ मैं संसार नूं दस रहा। दूजी गल, ओना तो विछोड़ के जे मैं आखा मेरे पैरां दी पूजा करो तां ते मैं भुल विच हां। मैं कहंदा भई नहीं, ओ भी दस रहे ने, मैं भी दस रहा, उस वाहगुरु दे तुसी भी सेवक बनो, इसलिए मेरा किसे नाल वैर नहीं। हजूर कहंदे ने

महाराज के दरबार विच तऊ सरंदे ते रबाब वजा के इना रीतां दा कीर्तन सतगुरु दी हजूरी च हुंदा रहा है। ये पुरातन रीत श्री हरिमंदर साहिब दी ये भेंट है।

लेखना कबीरा तूर पटेल के पुड़िया बांधी दे दिल सो चार को देखना अंत खे पीछे सुनी दे डरावनी सुनी दे डरावनी जाजी विचों जाए पाए।

गगा गोविंद कुंद्रवो सास सास जपनीत कांब सासा देता बिलम ना करियो मीत मैं बारक न जोबने मैं बिरदी।

चलने चलना हार बिचारा ले मनो चलने चलना हार बिचारा ले मनो गंढे दिया छे मार तोड़े दिया चिट्ठीनो जिमें पुछे आसमान फरीदा केवट किन गए

मन तन तेरा तन भी तेरा तू ठाकुर स्वामी प्रभु मेरा जियो पिंड सब रास तुम्हारी तेरा।

नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया, बिन जेवा कहा को बकता, बिन श्रवना कहा को सुनता।

बिन बूझे कहाँ मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना। बिन बैराग कहाँ बैरागी, बिन हों त्याग कहाँ को त्यागी। बिन बस पंच कहाँ

गोविंद ना भजे अहं बुध माता जन्म जुए ज्यों हारे नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे छापर बांध सवारे तृण को द्वारे पावक जारे कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन से डारे मोढ़े वस्त्र का